0: ZFM, Excel i Kasımlovca.
1: Bijay Tanchek. विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
2: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

TCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL, इंस्पायर ग्रेटनेस।

तथा शेयर शर्ट गिफ्ट्स, वाशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवाशर में वाशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: BJ टाइम विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: अहिले दिउँसोको 2 बज्यो।
0: पढ्ने होइन त अब 2000 मै जापानिज भाषा
2: 2000 मै जापानिज भाषा कहाँ
0: हजुर एम्स

0: DJ Tanjin. विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।

एंड होम अप्लायंसेस को खरीद में आकर्षक कैशबैक तथा पक्का उपहार। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 2 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 1 केजी एरियल, माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट र एसी में फ्री इंस्टॉलेशन। नागरिकता भए पुग्छ। सीजेएलएक्स ईएमआई मार्फत सजिलै खरीद गर्न सकिन्छ।

शेयरशॉट गिफ्ट्स वाशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक डिशवाशर में वाशिंग टैबलेट्स एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्रणालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र सन्तुष्टिको लागि
2: भन्ने होइन त अब 2000 मै जापानीज भाषा
3: 2000 मै जापानीज भाषा कहाँ
2: हजुर एम्स एबोर्ड एजुकेशन मा अब 2000 मै जापानीज भाषा
3: हामी कहाँ जापानीज भाषा टेस्ट प्रिपरेशन IELTS PTE सेट क्लास का साथै डियोलिङ्गो पनि पढाइन्छ
2: जापान यूके अस्ट्रेलिया क्यानाडा यूएसए न्यूजीलैंड दक्षिण कोरिया र युरोप पढ्न जानका लागि भरपर्दो माध्यम एम्स एब्रोड एजुकेशन मुख्य कार्यालय भरतपुर चितवन फोन 0556588694 शाखा कार्यालय कालीगण्डकी चोक गैडाकोट फोन 0785012094 मोबाइल 9809233894

0: BJ 战舰。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी,
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए।